पास न हुआ, आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और कहें कि आत्मा तो मरती नहीं। तसल्ली के लिए कहें कि आत्मा काटी नहीं जा सकती, लेकिन ये बंधनों में जकड़े रहे, हर जन्म में शरीरों के साथ दुख उठाती रहे, तो विचार करें कि ये अमरता हमारे किस काम की है।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सारा नु मेरी राम राम। थम सुन रहे रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 MHz पा। मैं लेकर आई हूँ कार्यक्रम आओ गांव चले। मैं थारे साथ नेहा धाकड़। आज हम बात करांगे गामा के जीवन के बारे में, भी जोन से मारे दादे बाबे पुराने टाइम बुजुर्ग होए करांते उनका जीवन कैसा हुआ था और जोन से मारे मॉडर्न न्याणे हम बालक मारा जीवन कैसा है। पहला गामा में कोई सड़क नहीं होए कराती, बैलगाड़ियां पजाए करांते और स्कूला में जाना होए कराता न्याणे नु पैदल जाए करांते सारे, और कोई सुविधा नहीं होए कराती, रोटी होए कराती अपनी चूल्हे आरे पर बनाए कराते। पर आज मारे मॉडर्न गामा मा घर घर गैस हो गए, रोटियां अपने गैसा पर बना रहे और बसा घर के गाड़ी छोड़ कर जाए तो। और आज के मॉडर्न गामा मा सुख सुविधा ज्यादा होगी, आजकल लोगों नु बसा घर के अग्गा छोड़ना वा और जोन से मारे न्याणे है मैं बुलट और मोटरसाइकिल पर स्कूला मा जा। गांव के बारे में और जानकारी देने वास्ता आज हम पहुंचे हैं गांव फतेहपुर मा, जहां हम बात करांगे बुजुर्ग दादी स्वरूपी देवी ते,
3: जिनकी उम्र लगभग होगी 95-94 साल की। राम राम दादी।
4: राम राम भाई।
3: और दादी ठीक ठाक?
4: हाँ ठीक ठाक मजे।
3: अच्छा दादी मनु न्यू बता।
4: हाँ।
3: भी जोन सी मारे गांव की जिंदगी हो एक रहती पहला और जोन सी आ जा उसमें रहने सहने खाने पीने में कितना फर्क पड़ा?
4: बहुत फर्क पड़ गया।
3: अच्छा दादी पहला कैसा खाना हो एक रहा था?
4: पहले अच्छा खाना हुआ था, ये खाना सब काम काम दाने गैसा का खाना तो पहले खेचड़ करे करा दे बैरा खेचल ते रोटी बनाए करा दे आटा गूंद कर रख दिया वो किकनी मराती पौने के वक्त पर फिर उसनो को मुख कोई देहे थी अटका गूंद का फिर रोटी पुआती वह फक्की रोटी हो आती वह खाने में स्वाद लगाती। अभी तो कुछ भी नहीं तो बस वह बलबुद्धा का जार खड़ा दिया, ये खाना कोई नहीं काम का।
3: ठीक बात दादी। और दादी जिस तरह थम दाल सब्जी करे करांते लस्सी किस तरह करे करांते थम?
4: लस्सी दूध आरे में तपाना कढ़ाना है ना उसनु कढ़ाए कर सन 4 बजे काट का जमाए देना, अगला दिन फिर करसी पाई देनी फिर दूध आवे में रखना दाल आवे में रखनी दाल सब्जी सब चूल्हे पर बनाती आरे में दाल बनावा ते चूल्हे पर सब्जी सुब्जी कर लेते बाकी और सारा आरे में बने करा था आरे में।
3: ठीक बात दादी। और दादी जो हमारा भरावा ही करा था ओ कैसा होए कराता थारे टाइम मा?
4: मारे टाइम मा सूतड़ू होए कराता, सूतड़ू के घगरे सूतड़ू के सूट ने पाए कराते या दुनिया का भी धोती सूतड़ू भी लगे कराते।
3: ठीक बात दादी। यो सूतड़ू स्त्री होए कराता क्या जिस तरह अपना यो रेशमी हो और सूती हो?
4: रेशमी नहीं हो तो उनके घर का होए कराता बनवाए कराते उन्नो तो।
3: ठीक बात। और दादी स्कूल में न्याणे जाए कराते बैग बूग नहीं ले जा कराते जैसे ही चल रहे?
4: जैसे ही बिल्ले चल रहे नहीं जानते जोड़े सीवे कराती बैरिया घर सूई गेर सीवे और अपने बच्चों नु दे दिए और घर सूई ते अपने घर सीवे कट्टे बाढ़े कपड़ा और घर सीया और अपने बच्चों का पढ़ाई दिया, कोई दर्जी नहीं था कोई कहीं कुछ नहीं था ना कहीं कोई डॉक्टर पावा था, बस अपनी लस्सी पी ली कि बुखार आ गया नून पाई लस्सी पी ली बुखार उतर गया चल सर गया, ऐसी बीमारी कोई नहीं आवाती है।
3: ठीक है बात दादी। अच्छा यो तो होगी थी खाने पीने रहने की बात, इमनु न्यू बता भी जोन सा पहले अपने रिश्ते होए करांते वह कैसे होए करांते जिस तरह भाई बहन हो गया चाचे ताऊ अपने मामे नाने इतनी प्यार था रिश्ते में?
4: पहले प्यार था ज्यादा इब प्यार नहीं रहा, पहले प्यार करे करांते मम्मिया के भर के कपड़े लिया करा थे, वही लड़की भी पावा थी लड़का भी वही पावा था। मोड़ लिया करा थे मम्मे, मोड़ बंद का बनना जाए करा था बनका। रोटी बनने की वही जाए करा थी जहां बरात टीका थी। शक्कर चौल देसी बुरा की यो ही करा था खाना, यो खाना नहीं था ही बाला।
3: ठीक बात। और आपस में बोल बाणी जैसे लाले गों का है गया, कोई अपने बेड़े पड़ोस का है गया, प्यार प्रीत
4: प्यार
3: कैसी थी?
4: प्यार ते प्यार ते बिठावा ते चर्चा चुगली नहीं थी है। चल चर्चा चुगलियां तो नहीं भी चली, लड़ाइयां ही भी चली। जद ना कोई लड़ा था ना कोई प्यार, इतना चर्चा चुगली करा था। प्यार ते बैठे करा थे, प्यार ते रहे करा थे। चाह पानी चाह भी नहीं थी, चल तो दूध पिए करा थे, लस्सी दूध।
3: ठीक है बात। अरने घर जोन से अपने ने सीमेंट के और पत्थरा के वहां जद कैसे होए कराते हैं?
4: ने कच्चे होए कराते, कड़ियां सतीर रखे कराते ऊपर, ठंडे कराते गाला लाए कराती बहरिया, उनमा ठंड रहे कराती करसामा। पक्का कोई चीज नहीं थी चाहे, ये तो पक्के मकान रह गए, क्या कहना।
3: और घर नहीं है मिस्त्री बनाए कराते कि थम अपने आप बनाए
4: आपको बनाए ले कराते घर भी आदमी।
3: ठीक है बात।
4: कच्ची ईंटा पाथली और इन ईंटा के घर बनाए लेंदे आपो, मिस्त्री मुस्त्री कोई नहीं था ज्यादा।
3: ठीक है बात। अरे जिस तरह पानी है अपने आप तो सुविधा होगी, जिस तरह ट्यूबवेल की और टूंटियां लगी घर में, पहला किस तरह था यो पानी का सिस्टम?
4: पानी का बसराम यो था भी कुएं खुद रहते, कुएं में थे बेड़ गिल्लो पानी गड़े में पाई बेड़, अतला छोड़ दिया कुएं में तो पानी खींचे करा बेड़ गिल्लो।
3: ठीक है बात। और बात बता दादी, कोई अपने टाइम की क्या था रा रहने का सिस्टम था, और बता कोई नवी बात।
4: नवी बात तो नहीं है बेटे अपना, पहले तो लड़की ऐसी थी बे शर्माए करांती, ईब कोई शर्माउंदी हो नहीं कहीं ते भी, ईब ना छोकरे शर्मावा ना छोकरियां शर्मावा। पहले छह छह महीने रहे करांती बाप क्या का ब्याह मकलावे करवाए का, ईब तुरत की तुरत आई चाह पानी पिया चल मिल ली तेरी बार माँ रण ली अक्सनू ब्याही मकलाई जमी पाली पढ़ाई, कम से कम 2 दिन तो रहन दे लड़की नू गिर पड़ी लेकर हो जा।
3: ठीक है बात दादी। दादी तन्ने भी पाए घगरे तो सूट पाए?
4: घगरे पाए मन्ने भी।
3: अच्छा
4: घगरे पाए कराते दर्जी सीए कराता, सांझ की तीवल भी सूतड़ू क्या कराती, सूतड़ू रंगिया और ब्याह ते पहलो रंगिया और उसनू अपना कट्टिया बढ़िया हो और सीया अग सांझ की तीवल आया मिलनी की बहू की, पर भी आवाती मिलनी और भी मिलनी। बरात आएगी एक दिन बढ़िया रहो आती, अगला दिन बरात छोकरी विदा करा दे, एक रात राखनी मुश्किल।
3: हाँ ये बरात हुआ जो सीब तो पहल समावा जदी की जदी चली जा थारे टाइम कई कई दिन रहे
4: कराती, ते मां 3 दिन रहे कराती बरात।
3: अच्छा
4: हाँ।
3: और फिर खाना पीना दादी?
4: खाना पीना यही था, दोपहरे नु शक्कर चौल दाल, रात नु बुरा चौल दाल, कोई और सब्जी नहीं होती, दाल चौल यो ही करा था। अगला दिन दोपहरे नु बरात नु रोटी बांड का खड़ाए करांदे गाँव में, दो दो चार चार आदमियों नु बांटते करांदे न्यौंद देंदे भी रोटी महाराज थारी। रात नु फिर दाल चौल बुरा देसी घी यो था खाने का, अगला दिन वैदा कर देनी।
3: और जिस तरह ये हलवाई बनावा तो खाने खुने, और पहला कौन बनाया करा था थारे टाइम में?
4: मारे टाइम में तो आपो बनाए करा थे पादा, परोहत होए करा था और परोहत बनाए करा था दाल रोटी।
3: ठीक है बात दादी। ठीक है बात दादी। पहला टाइम कुछ और था, इब कुछ और टाइम
4: कुछ और आई गया टाइम, ये हलवाई चल रहे। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਕੁੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕੂਟ ਲਿਆ।
3: ਠੀਕ ਬਾਤ,
4: ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬੁਰਾ ਦੇਸੀ ਖਾਂਡ ਹੋਏ ਕਰਾਂ ਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ
3: ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਕਰਾਂਦੇ ਥਮ?
4: ਚੀਨੀ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ
3: ਉਹ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਕਰਾਂਦੇ?
4: ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੁੜ, ਚਰਖੀਆਂ ਚਲੇ ਕਰਾਂ ਤੀ ਗੰਨਿਆਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਵਿਆਹ ਮਾਂ ਪਾਈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰ ਗਿਆ।
3: ਔਰ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਵੀ ਬਤਾ, ਅੱਛਾ ਥਾਰੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਫਸਲ ਕਿ ਹੋਏ ਕਰਾਂ ਦੀ?
4: ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਤ ਨਾਜ ਬੋਏ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੇਹੂੰ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਸੌਂਖ ਕੌਣੀ ਮੰਡੂਆ ਸਾਤ ਨਾਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਦਿਨ ਸਾਤ ਨਾਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਸਰੀ ਚਣੇ ਇਨਕੀ ਦਾਲ ਬਣਾਏ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਸਰੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਮਾਰਾ ਪੀਸੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਝੀ ਕੋਈ ਨਹਾਣੇ ਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥਾ।
3: ਅਰ ਨਾ ਦਾਦੀ ਥਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ
4: ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਜਵਾਨ ਕੀ ਫੱਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਧ ਗਿਲੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਚਮੱਸੇ ਮਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਤਾ ਬਾਦਵੇ ਮਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂਣ ਪਾਇਆ ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਹੋ ਤੀ ਲੱਸੀ ਪਾਪੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਕਤਾਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਤਾ ਘੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਿਆ ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੇਚਦੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਤ ਤੀ ਪਾਏ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰੇ ਵਕਤ ਮਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਸਾਤ ਨਾਜਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂ ਤਾ ਰਾਜੀ ਕੁਸੀ ਰਹੇ ਕਰਾਂ ਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਰਾਂਦੀ ਚਾਰ ਬੈਰਾਂ ਬੈਠ ਕਾਂ ਸੇ ਬੋਲੇ ਕਰਾਂਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਾ ਬੋਲਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਠਾ।
3: ਠੀਕ ਬਾਤ ਆ ਦਾਦੀ, ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕੇ ਦੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠਦੇ
4: ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
3: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਤੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਔਰ ਜੋਨ ਸੇ ਮਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਦਾਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੂੰ ਆਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਵੀ ਆਜ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਜੋਨ ਸਾ ਮਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਾਨੂੰ ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ?
4: ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣਿਆ ਬੂਆ ਉੱਕਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖੋ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰੱਖੋ ਉਸ ਮਾਂ ਤਵੇਂ ਪਾਸ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਂ ਕਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਚਾਰ ਜੈਸਾ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਸੀ ਬਿਮਾਰ ਚਲੋ ਉਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ।
3: ਠੀਕ ਆ ਬਾਤ ਦਾਦੀ, ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਜਦੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਕਾਢ ਗਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦਾਦੀ, ਅਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਕੁਛ?
4: ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ।
3: ਠੀਕ ਆ ਬਾਤ ਦਾਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਦੀ ਤੇਰਾ ਇਤਨੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
4: ਧੰਨਵਾਦ।
2: ਯੋ ਥਾ ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਸਫਰ, ਮਾਰਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆਓ ਗਾਮ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਬ ਮੈਂ ਚਲੂ ਹੂੰ ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਥਮ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦਸਤਾ ਥਾਰੇ ਗੋਮਾ ਵੀ ਆਵਾ ਤੋ ਥਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਆ 7056413010 ਔਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਤੈਰੀ 7056413010।
1: ਥਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ।
5: अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: जग में भंडारा करा जा जिसमा सारा गौ शामिल होवा। सारा गौ मिलकर दान भी करा और गेलो भंडारे में सेवा भी करा। खेड़े की जग के बारे में और ज्यादा जानकारी वास्ता हम बात करांगे गौ की कमेटी मेंबर ते और गौ के जोन से अपने पुराने बुजुर्ग उनते। इस जग के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम बात करांगे गौ के आदरणीय दलजीत सिंह राणा ते, जिनकी उम्र हो रही 76 साल और जो कदी ते समाजी काम मा अपनी भूमिका निभा दे रहे। और इनके साथ और गांव के कमेटी मेंबर शिवदयाल जी, फौजी करतार चंद जी, अशोक जी और जय कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। पहला हम बात करांगे दलजीत जी ते। राम राम बाबा।
1: राम राम भाई। राम राम।
0: और बाबा ठीक ठाक?
1: ठीक है भाई।
0: तो बाबा मनु न्यू बता भी अपनी जोनसी खेड़े की जगह वक्त ते चलती है री, और यह खेड़े की जग मनाने पीछा क्या महत्व कारण है इसका?
1: इसका जी महत्व ये है कि ये खेड़ा जो नगर है हमारा, किसी गांव का भी है, ये गांव की रक्षा करता है, गांव की सेवा करता है। क्योंकि दुख दलिद्र जो आता है पहले खेड़े को पूछता है, फिर आता है। ये खेड़ा गाँव का नगर निर्माण करता है, फिर इसकी जो जग करते हैं, जग पहले तो मिठे चावल करे कराते, मिठे चावल करका फिर खीर लग गए करना, खीर चावल बना दिए हैं जी। अब ये मॉडल दूसरा बदले तो जलेबी चल रही है, ये है नमे नमे है जी।
0: ठीक बात बाबा। और बाबा थारे टाइम मा गोमा ते नाज कट्ठा हुआ था और जोन सा खाने पीने का था मटीरियल हुआ क्या क्यों करा था और पैसे पूसे किस तरह कट्ठे करे कराते थे?
1: पैसे भाई सब नु कहे करांदे भाई पैसे दो खेड़े की जगह, सब देते जैसा किसी पे पुगा था, कोई 100 देता, कोई 50 देता, कोई 20 देता, कोई 30 का, ऐसे ही जमाना था। अब तो पैसे ज्यादा हो गए, हुन तो पैसे कितनी ले लो किसी पर।
0: ठीक बात बाबा।
1: और भाई खेड़ा की जग करा थे, बड़े प्रेम से करा थे, सारा गाँव इकट्ठा होके प्रेम से काम करा थे जी। खाना पीना मोटे थे, मक्की का नाज था, लस्सी थी, मक्खन के साथ रोटी खाए करना थे, और साग था, बढ़िया चीज थी। अब तो खाना भी वैसे कहती।
0: ठीक है बात बाबा। और बाबा जिस तरह खेड़े की जगह आती तो कोई अमनु मन जिस तरह कह दे नाल नूल काटा उसनु किस तरह क्या मतलब था?
1: हमन तो जी ऐसे है, हमन हर जगह होता है, खेड़े का भी होता है, कोई अपने घर शुद्ध करने खतरो वहां भी अमन होता है, कहीं मंदिर होता है वहां भी अमन होता है, हमन कहीं भी खो सकता है। हमन तो शुद्धि के लिए है, शुद्धि खेड़े की शुद्धि करो या किसी हनुमान जी की शुद्धि करो, किसी देवी दुर्गा की सिद्धि करो, किसी पितरा की सिद्धि करो, वो हमन जरूर होता है। ठीक है।
0: ठीक बात बाबा। और बाबा जोनसिया नाल काडा कहा गों के बाहर नू?
1: ये नाल ऐसे है जी भी एक ये जो चारों तरफ घूमते हैं एक किस्म का बंधन हो जा, गांव के अंदर कोई पत्ती ना हो जा, कोई लड़ाई झगड़ा, डंगरा में शांति शुक्ति, सब परिवार में शांति रहे, सब रहे गांव में शांति रहे, ये नाल शांति की है।
0: ठीक बात बाबा। और बाबा थारे टाइम में जिस तरह रोटी खाए करांते भंडारे में तो पतला का प्रयोग करा जाता, इसका क्या महत्व था भी पतला में खड़ा करांते यार और उस मनी बसन
1: जी? वो बेचारी गल भी जाती, फूक भी जाती, ये प्लास्टिक तो सॉरी बहुत माड़ी है, तो सॉरी नुकसान कर रही है धरती माता को भी, ये नहीं ठीक है। पहले जो थी वो शुद्धि थी, खाना हमेशा शुद्धि थी, वो थे मिट्टी के वो करा दे कसोरे, उन माँ पानी पिए करा थे कसोरिया माँ, बरात में भी कसोरे मिले करा थे। अब तो भाई मॉडल जमाना है तो क्या कहते हैं इसके बारे में।
0: ठीक बात बाबा। मॉडर्न जमाने के बारे में बात करने वास्ता हम जुड़ांगे चाचे ते। राम राम चाचा।
2: राम राम बेटा।
0: और चाचा ठीक ठाक?
2: ठीक ठाक बेटा, आप सुनाओ?
0: ठीक है चाचा। अरे चाचा मारे एक कमेटी का मेंबर आ, तो चाचे आज मानो न्यू बता भी आज के टाइम में भंडारे का किस तरह सामान इकट्ठा करा और खाने में क्या क्या बनावा?
2: बेटा आज के टाइम में 10 बाई इकट्ठे का हम गाँव में तलाद डोलिए के साथ कुआ देते हैं, और सारा गांव इकट्ठा होकर के कोई 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2100, बहुत ही लोग दानी पुरुष दान देते हैं, और हमारी कमेटी इकट्ठा होकर के पूरे प्यार सहयोग से बैठ करके उसके लिए सभी भाइयों के साथ बैठ करके भंडारे का आयोजन किया जाता है।
0: ठीक बात चाचा। और चाचा जिस तरह

0: कौम भंडारा, तो इसके बारे में फिर बताने वास्ते डोलिया बुलाया जा।
1: डोलिया बेटा हाँ बुलाया जाता है, और डोलिया तीन दिन फिरता है। एक दिन पहले बजाएगा, अभी चौल दे दो, घी दे दो, दूध दे दो, लस्सी दे दो, और फिर अगले दिन के लिए आएगा, अभी भाई डाल दे दो पैसे की। फिर लोग इकट्ठा होकर के एक जगह बैठ जाते हैं, 10 भाई, सारा गांव ही वहां पे डाल दे जाते हैं।
0: और आज के टाइम में भी जिस तरह गोवा में भंडारा हुआ, तो भंडारे का डोलिया सारे गोवा बता हुआ भी आज गोवा भंडारा और सबनु आना, और यो भंडारा बतादार डोलिया किस तरह कहा, सुनो भाई।

आप ही खेड़े राजा का बना रहा भाई आज भाई। चीनी चोर दूध लस्सी दार करो भाई, पैसे बचाओ भाई, दार करो भी दार भाई।

0: रही हो, इस तरह आज के टाइम में भी गोवा मा डोलिया है, सारे गोनू कह कावा भी भंडारे माना, और कोई भी गो मा तला देनी हुआ तो यो डोलिया अपने डोल के माध्यम ते सारे गोवाले नू तला देवा। और चाचा जिस तरह पहले टाइम में कोई फोन नहीं हुआ था, कोई टेलीविजन नहीं हुआ था, और गो में कोई खबर देनी हुआ थी तो डोलिया ही देवा था अपने डोल गेल, और आज के मॉडर्न टाइम में भी डोलिया ही गो में संदेश देवा।
1: डोलिया ही देवा बेटा, पहले चौकीदार भी होकर था गाँव में थे और देख रहा था, लेकिन डोल बिना बात नहीं बनती, डोलिया ही देते दे, एक नू ना सुनाओ दा सानू और सुन जा गेलो।
0: ठीक बात चाचा, तो हम दूसरे चाचे ते भी बात करांगे इस बारे में। तो चाचा तुम बता भी आज के भंडारे मार पहले भंडारे में क्या फर्क पड़ गया है हमारे बीच में?
2: आज के भंडारे मार पहले में तो जमीन आसमान का फर्क है जी। पहले मन ने भी खाया जो चाचा जी ने बताया था, चौल कर लिया, दलिया कर लिया, खीर कर ली। आज तो बहुत बदल गया जमाना, पैसे की दिक्कत रही नहीं, जलेबियां बना लो, कढ़ी बनाओ, चौल बनाओ, ये तो परंपरा रही बनाई हुई।
0: ठीक
2: बात, बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार गाँव वाले 10 रुपए दान करो दे, डोलिया डंका मारो दे, सब नदी हो जा गाँव में, उस हिसाब से फिर अपना पैसे बटले हो जा कर दें। आज भी करिए गाँव में, जब 10 आदमी इकट्ठे का जब कर दी, बच्चे ने भोजन खड़े दिया।
0: ठीक बात चाचा, अरे चाचा जिस तरह यो भंडारे हो गाँव में, इससे क्या फर्क है अभी हमारे बीच में प्यार बने रहा, क्या मतलब है इन भंडारे नु करने का?
2: इससे तो बेटा ऐसा, कोई गरीब आदमी 10 रुपए दान करना चाह अपने पास से तो कर नहीं सकता, गांव के रले में सारी गांव वाला 10 रुपए वाला भी आ गया, 5 रुपए वाला भी आ गया, 100 वाला भी, 1000 वाला भी, 2000 वाला भी आ गया, तो तकरीबन गांव का समर्थन काम हुआ, सबका लग रहा है, 10 रुपए वाला भी लग रहा, 1000 वाले का लग रहा।
0: ठीक बात चाचा, अरे चाचा इस ते न्यू भी हो अभी आपस में प्यार बने रहा, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रहती, और सारे एक जगह बैठ कर रोटी खा ले इकट्ठे होकर।
2: हाँ ऐसी बात भी है बेटा, 20-25 साल इस काम कर दे ना, आज तो कोई फर्क नहीं आया, दो चार दिन पहले बैठ कर सलाह करेंगे, डोले पे डंका मरो, चौकीदार पे तला दो, गांव में जाकर भंडारा करेंगे।
0: ठीक बात चाचा,
2: उसी सिस्टम से अपना लोग पैसे लग जाते हैं।
0: तो गांव के जग के बारे में और जानने वास्ते हम बात करेंगे कमेटी मेंबर थे, और हमारे गेल जुड़ रहे हैं अशोक जी। तो अशोक जी मैं आपसे न्यू पूछना चाहूं भी आज के भंडारे मार पहला के भंडारे में आपनु कितना फर्क देखने में नजर रह रहा, और जिस तरह आप कमेटी मेंबर हैं तो आप क्या कुछ देख रहे हैं?
3: क्योंकि जो पुराने समय के अनुसार जो भंडारे गांव के बीच में होते थे, उनके बीच में सभी लोग उतने समर्थ नहीं थे पुराने टाइम के बीच में, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे भी कोई चावल या गुड़ इकट्ठा होता था, उस चावल और गुड़ को इकट्ठा करके एक मिठ्ठे चावलों का भंडारा दिया जाता था, और गाँव की सुख शांति समृद्धि के लिए वो भंडारे दिए जाते थे। और आज जैसे समय का बदलाव होता जा रहा है, उसके बीच में लोगों का विकास हो चुका है और लोग काफ़ी समृद्ध हैं, आज के अनुरूप एक लोग एकत्रित रूप से आपसी भाईचारे के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में चावल और पैसे की कलेक्शन करके एक दूसरे के सभी सहयोग से काफ़ी लंबे रूप से भंडारे का आयोजन किया जाता है। और इस भंडारे का मेन महत्व हमारे गाँव में यह रहा है कि लगातार हमारे गांव में 10-15 भंडारे होते हैं, तो उन भंडारों के अनुरूप गांव में जो आपस के जो नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी एकजुट होकर एक दूसरे के समाज सेवा की भावना विकसित होती है गांव के लोगों के बीच में, और आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। इसके बीच में जो एक दूसरे के देखा देखी लोगों को समाज के बीच में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर करने में काफ़ी सहयोग मिलता है, और एक दूसरे को देखा देखी लोगों को एक समाज सेवा का बहुत अच्छा अवसर मिलता है।
0: तो आप मतलब समझ रहे हैं अभी पहला हमारे मॉडर्न टाइम में फर्क पड़ गया भंडारे में, पहला ज्यादा उस तरह तरीके होते हुए करते, आजकल थोड़ा अलग तरीका हो गया भंडारे का, पर आप क्या कहना चाहें अभी ये भंडारे यूं ही चलते रहने चाहिए, और भी इससे जोन सी हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं वे खत्म हो रही, तो आप क्या कहना चाहें अभी गो जोन से हमारे बदलते जा रहे उन्होंने अपने पुराने टाइम नु अपनाना चाहिए कि नहीं?
3: क्योंकि जो पुराने टाइम की सामाजिक भावना थी, एक दूसरे के पास जैसे संचार के माध्यम नहीं थे, एक दूसरे के पास आपस में बैठकों का आयोजन होता था, एक दूसरे के सुख दर्द में शामिल होते थे लोग, तो इन भंडारों का एक यही माध्यम है, जैसे आज के मीडिया का प्रचार हो चुका है और ज़्यादातर बातचीत का जो साधन है मोबाइल साधन बन चुका है, लेकिन एक ये एक भंडारे का एक जब अवसर आता है तो उस अवसर के ऊपर गांव के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का मौका मिलता है और एक समाज को नई सीख मिलती है, और समय समय पर इन भंडारे के आयोजन से एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा संचार होता है लोगों के बीच में, और नई प्रकार के सनातन धर्म को विकसित होने में सहयोग मिलता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। और इस भंडारे के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हमारे गेले एक बुजुर्ग और जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूछांगे भी जो हमारे भंडारे जो उनसे चल रहे हैं वह उनका हमारे गांव वास्ता कितने ठीक हैं कितने नहीं। राम राम ताऊ।
4: राम राम जी।
0: तो ताऊ मनु न्यू बता भी जोन से थारे टाइम के भंडारे थे और जोन से चल रहे भंडारे इनमें तने कितना फर्क देखने नु मिला।
4: इनमें फर्क ये लगा जी, पहला भंडारे संस्कृति के हिसाब से है ना अपनी सुख समृद्धि वास्ता करे जाते। अब हम नगर खेड़े को है ना क्षेत्रपाल कह के है ना अपना रक्षक मानना थे उसकी है ना मतलब जैसे भादवे में ज्यादातर भंडारे करते हैं। भंडारे उस टाइम पर बारिश सूख जाती है, बादल चले जाते हैं, भाई बादल बरसागा हमारे नाज होगा हमारा कुछ होगा बधागा कुछ भी होगा इस डर से भी करते थे हम। दूसरा डर था यो कि कोई गांव में संकट मुसीबत कोई भूत प्रेत बतावा भी जो हमारे पंडित हैं संस्कृति के शास्त्र हैं या उनमें भी लिखा हुआ भी खेड़ा रक्षक है गांव का उससे पूछ के उसमें अंदर एंट्री करते हैं वो, इसलिए उससे मतलब उसको खुश रखने के लिए हम भंडारे का आयोजन करते हैं।
0: ठीक बात था, उतने तो बहुत बढ़िया बात बता दी भी पुराने टाइम में किस हिसाब से मनावा थे। तो ताऊ जिस तरह यो हम भंडारा करा यो प्यार ते करा है भी सारे कट्ठे होगा कि न्यू भी न्यू ही कर रहे बस भंडारा करना एक नाम सा करना अनेक
4: नाम नूम तो कोई नहीं करना सब नु जिस जिस गांव का भंडारा और जिस गांव का खेड़ा है उसमें यो सोच के करा वो भंडारा कि हमारे आगा बाल बच्चे हैं डंगर पशु अनाज होगा कुछ होगा भाई हमारा रक्षक हमारी मेहनत करागा हमारी वो बात सुनागा हमारी भगवान तक पहुँचाएगा वहां से बाहर से लाएगा हमारे को आगे पालन पोषण करेगा हमारी रक्षा करागा इस डर से भी करते हैं हम। असली बात तो यह भी है और बाकी है ना फिर जो दान दक्षिणा है अब जमाने का खाने बदल गया नाच बदल गया सब कुछ। पहले मंडवा खाते थे चौंगनी खाते थे फलाना खाते थे चने खाते थे अब सब तो नाच ही है ना अपना आजकल पता क्या उस पर एवरेज पर चले गए। अब गेहूँ निकलती है 10 क्विंटल जीरी निकलती है 50-25 क्विंटल अब कहा चने निकलते 2 क्विंटल वो बोलते हम जीरी बेच का है ना 2 क्विंटल ना चने ले लेंगे लिए जाते नहीं फिर वही खाने पड़ जाते हैं मजबूरी तो हमारी यह भी है। अब हम थोड़ा सा हम पीछा रहेंगे तो हमारे बच्चों का पालन पोषण ठीक नहीं हो सकता हमको तो ज्यादा कमाई चाहिए हमारा जो है ना 10 रुपए फालतू या कोई बात नहीं अब पिछले खाने तुम्हारी मजबूरी में छूट गए।
0: ठीक बात यूं तो ताऊ कहां भी है भी प्यार ते बनाया हुआ भोजन तो प्रसाद के समान हुआ और बोझ ते बनाया भोजन जहर के समान हुआ तो मतलब भंडारे में सारे प्यार ते लक्का सेवा करा जो जो पुगा अपना सारा दान दक्षिणा दे।
4: ऐसा है जो गुरु या भगवान जो गुरु के स्थान पर या भगवान के स्थान पर कोई भोजन का आयोजन किया जाएगा वो कुदरती ही उसका नाम आएगा बीच में वो सुंदर बनागा बढ़िया बनागा अच्छा बनागा 10 रुपए मांगो 11 देकर जाएगा और उससे प्रेम भाव ज्यादा फैली फैलागा। और उससे हम दो सब चीजा समझते हैं भाई इतना पता था गांव का खेड़ा क्षेत्रपाल है फिर भंडारा के रूप में औरतें दाने दे के आती उस पर ना चढ़ाती है खेड़े पर भी हमारे डंगरा में पशुओं में पशुधन में वृद्धि रहा और हमारे सुख शांति रहा इतना को पता हमने तो पाक।
0: ठीक बात ताऊ बहुत बहुत धन्यवाद सारे ताऊ चाचा के जिन्होंने मनु इतनी जानकारी दी और हमारे स्रोता इतनी जानकारी दी और जो हमारी परंपरा खत्म होंगी जहरिया उसनु अग्गा बढ़ाने के बारे में कहा भी है परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति है मन उसते भूलना नहीं चाहिए और हमारे जो से बुजुर्गा ने हमारे वास्ता काम करे मन उस तरी ही अग्गा लेकर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सारा का। ते मारा कार्यक्रम मारी संस्कृति और हम अगला कार्यक्रम लेका फिर थारे ते रूबरू होवांगे। तब तक सुनते रहो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 MHz पा। जे थारे पास भी कोई जानकारी है तो थम मारे स्टूडियो नंबर पा फोन या मैसेज करका मनु बता सका। मारा नंबर आ 705641310 705641310 जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, और लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। पत्तेदार सब्जियां 45 से 60 दिन, अन्य 90 से 110 दिन में हो जाती हैं तैयार। अगस्त सितंबर में कम अवधि वाली पत्तेदार और गोभी वर्गी सब्जियां उगाकर मुनाफा लें। किसान अगस्त सितंबर में कम अवधि वाली पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करके आय बढ़ा सकते हैं। मानसून के तुरंत बाद का मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। कम समय में तैयार होने वाली इन सब्जियों में मुख्य रूप से पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, चाइनीज कैबिज, ब्रोकली, मेथी और धनिया शामिल है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार, इन सब्जियों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकी और महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार फसलें बुवाई के मात्र 45 से 60 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की फसलें पनीरी खेत में लगाने के 90 से 110 दिन के भीतर बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। खेती की अच्छी जुताई, गोबर या जैविक खाद बढ़ाएगी उत्पादन। उन्नत किस्मों का चयन और बीज दर अच्छी पैदावार के लिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। पालक, ऑल ग्रीन, जॉबनेर ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23 और पूसा ज्योति बेहतरीन किस्में हैं। बीज दर 5 से 7 किलो प्रति एकड़। फूलगोभी नंबर 1522, रिया, गिरजा, विशप और कैस्पर उन्नतिशील किस्में हैं। बीज दर 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ पनीरी के लिए। बंद गोभी प्राइट ऑफ इंडिया इसकी एक अत्यंत शानदार किस्म है। बीज 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ पनीरी के लिए। मेथी एवं धनिया, मेथी के लिए हिसार सोनाली व धनिया के लिए हिसार सुगंध, हिसार भूमित जैसी उन्नत किस्मों की बिजाई की जा सकती है। खेत के लिए तैयारी और जैविक उर्वरकों का प्रयोग। सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता और अधिकतम उत्पादन के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और उसमें जीवाश्म ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में गोबर की खाद, केचुआ खाद, जैविक खाद या मुर्गी खाद का प्रयोग अवश्य करें। बिजाई के बाद केचुए खाद से ढक देना चाहिए। बैंड की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 90 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधशाला में कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। बीज की बिजाई के पश्चात उन्हें शुद्ध केचुआ खाद से ढकना बहुत लाभदायक रहता है। यह खाद सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जैसे मित्र फूफन से उपचारित होनी चाहिए, जो पौधों को बीमारियों से बचाती है। भूमि पर इस केचुए खाद की परत आधा से पौना इंच मोटी होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए पनीरी में हमेशा फवारा विधि द्वारा ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस मौसम में मक्का की फसल को तना छेदक और पत्ता अगमारी के प्रकोप से बचाना जरूरी। फसल में रोग से बचाव के लिए मेकोजेब घोल का छिड़काव करें। मक्का की फसल में पत्ता अगमारी व शीत अगमारी आदि बीमारियों का अत्यधिक प्रकोप होता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि पत्ता अगमारी में प्रभावित पत्तों पर मोतीनुमा या सीधे निरंतर लंबे स्लेटी भूरे रंग के हरे पीले प्रभामंडल वाले धब्बे देखे जा सकते हैं।
प्रमुख लक्षणों में डंडल पर पानी जैसे सफेद भूरे रंग के धब्बे बनना, डंडल का टूटना, सिल्क का अकड़ना और टूटना, दानों पर धब्बे बनना आदि शामिल है। संक्रमण बढ़ने के साथ हल्के भूरे रंग की फुफुंदी के साथ सरसों के बीज के आकार का काले रंग के स्केलोरिशिया भी देखे जा सकते हैं। यदि संक्रमण छल्ली तक पहुंचता है, रासायनिक विधि से पौधों पर 600 ग्राम मेंकोजेब इंडोफिल M45 का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस क्रिया को 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोहराएं। पौधों की निचली 2.3 पत्तियों को तोड़ने से भी शीत अगमारी रोग का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। मक्का में फॉल आर्मी वर्म से बचाव एवं प्रबंधन। मक्का में तना छेदक और फॉल आर्मी वर्म प्रमुख हानिकारक कीट हैं। इनमें फॉल आर्मी वर्म अत्यधिक हानिकारक एवं बहुभक्षी कीट है, जो कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी छोटी सुंडियां पत्तियों को खुरचकर खाती हैं, जिससे पिन के आकार के छोटे छेद दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों पर कागजी झिल्ली जैसे अथवा बड़े अनियमित छेद बन जाते हैं। सुंडी गोब में मलमूत्र भी छोड़ती है। कीट का प्रकोप फसल की शुरुआती अवस्था में अधिक होता है, इसलिए फसलें उगाने के तुरंत बाद नियमित निरीक्षण करें और शुरुआती लक्षण दिखते ही उचित प्रबंध व रोकथाम के उपाय अपनाएं। खरपतवार नियंत्रण। HAU के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. महासिंह ने बताया कि मक्का में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 500 से 600 ग्राम एट्राजिन 50% WUP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन के बाद या मक्का अंकुरण से पहले छिड़काव करें। ऐसे करें कीट नियंत्रण। फॉल आर्मी वर्म कीट नियंत्रण के लिए फसल की छोटी अवस्था 3 से 4 सप्ताह में 5% आक्रमण पर व 5 से 7 सप्ताह की फसल में 10% आक्रमण पर नीम की निम्बोली का 5% घोल या अजाडी रिएक्टिन 1500 ppm नीम तेल 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मौसम, सुंडी और लागत ने बढ़ाया कपास में जोखिम। बाजरा, मूंग, गवार बने पसंद। दक्षिण हरियाणा के 3 प्रमुख जिलों में लगातार घटा कपास का रकबा। दक्षिणी हरियाणा की पहचान रही कपास की खेती अब लगातार सिमट रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी के किसान लागत, कम पैदावार, कीट प्रकोप और कमजोर भाव के कारण कपास से दूरी बना रहे हैं। बाजरा, मूंग और गवार जैसी फसलों को अब अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ में 2020 से 2021 में 18,000 हेक्टेयर में कपास बोई गई और 6,372 टन उत्पादन हुआ। 2025 से 2026 में रकबा घटकर 12,70,000 हेक्टेयर रह गया। रेवाड़ी में 2019 से 2020 के 7,65,000 हेक्टेयर के मुकाबले 2025 से 2026 में कपास का क्षेत्र सिर्फ 2,32,000 हेक्टेयर रह गया, यानी करीब 70% कमी। उत्पादन में भी स्थिर नहीं रहा। 2021 से 2022 में औसत पैदावार 208 किलोग्राम प्रति एकड़ थी, जो 2023 से 2024 में 4,047.9 किलोग्राम हुई, लेकिन 2025 से 2026 में फिर 3,039.8 किलोग्राम रह गई। चरखी दादरी में 2016 के 23,245 हेक्टेयर से घटकर अब कपास का रकबा लगभग 6,000 हेक्टेयर रह गया है। 2025 में औसत उत्पादन 3,075.9
35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। किसान क्यों बदल रहे हैं फसलें? कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव के अनुसार कपास की खेती में सबसे बड़ा संकट लागत और जोखिम का है। समय पर बारिश न होने पर सिंचाई खर्च बढ़ता है और अधिक बारिश होने पर फसल प्रभावित होती है। गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए कीटनाशकों पर खर्च बढ़ता है। बीज, खाद, मजदूरी और दवाओं की कीमत बढ़ने के साथ बाजार भाव में अनिश्चितता जोखिम बढ़ा देती है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक गीतकार आए हैं। उन्हीं गीतकारों में एक खूबसूरत नाम है आनंद बख्शी।
1: दिल इंसान का एक तराजू।
0: 21 जुलाई सन 1930 को आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है।
1: जो इंसाफ को तोले।
0: बंटवारे के फौरन बाद आनंद बख्शी ने दिल्ली का रुख किया। आनंद बख्शी शायर तो थे ही, छोटी छोटी महफिलों में अपना ताजा कलाम पेश करने का उन्हें मौका मिलता रहता था। इसी दौरान आनंद बख्शी नौसेना में

0: सन 1957 एक फिल्म आई शेरे बगदाद, जिसमें आनंद बख्शी को गीत लिखने का मौका मिला। सन 1958 में एक और फिल्म आई भला आदमी, के लिए आनंद बख्शी को फिर से गीत लिखने का एक और सुनहरी मौका मिला। सन 1962 में फिल्म आई काला समंदर, जिसके मौसिकार थे एन दत्ता। इस फिल्म के लिए आनंद बख्शी ने गीत लिखे। एक गीत शायद आपको याद होगा, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम,
1: मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे।

सन 1962 में ही कल्याण जी आनंद जी के साथ आनंद बख्शी को काम करने का एक सुनहरी मौका मिला। फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ

मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जब जब फूल खिले हिमालय की गोद में मिलन आसरा आई दिन बहार के अनीता फर्ज दीवर चंदन का पालना आमने सामने राजा और रंग आया सावन झूम के जीने की राह दो रास्ते आराधना और बेशुमार फिल्मों के लिए गीत लिखकर आनंद बख्शी कामयाब गीतकारों में शुमार होने लगे।

में अनमोल बख्शी की यादगार फिल्मों में फिल्म अब्दुल्ला, आशा, कर्ज, लव स्टोरी, शक्ति, विधाता, अर्पण, कुल्ली, देश प्रेमी, हीरो, नगीना, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, चांदनी, त्रिदेव और भी बहुत सारी फिल्मों के लिए आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे।

0: आनंद बख्शी साहब ने अपने काम को जारी रखते हुए फिल्म जख्म, गदर एक प्रेम कथा, अशोका और यादें इन फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। कुल मिलाकर गीतकार आनंद बख्शी ने 638 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गाने लिखे।
1: चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था।
0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम के अलावा कई गुलकारों की आवाज में आनंद बख्शी के गीत सदाबंद किए गए।

दोस्तों बताया जा रहा है आनंद बख्शी 37 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए, जो अपने आप में एक खूबसूरत रिकॉर्ड है। आनंद बख्शी का विवाह कमला मोहन बख्शी से हुआ था। उनकी दो बेटियां सुमन दत्त और कविता बाली और दो बेटे राजेश बख्शी, राकेश बख्शी थे।

30 मार्च सन 2002 मुंबई के नानावती अस्पताल में 71 साल की उम्र में आनंद बख्शी साहब ने इस दुनियाई फानी को अलविदा कहा। आनंद बख्शी साहब जैसे अजीम गीतकार कभी मरते नहीं हैं, वो अमर रहते हैं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: 90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
3: गणपति बप्पा मोरिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 12। आज का शीर्षक है विरासत रिश्तों की। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी।
5: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का टॉपिक है रिश्तों की विरासत। कुछ कहना चाहते हैं माता पिता। रिश्तों की विरासत मजबूत करना जरूरी, ये परिवार के बड़ों से जुड़कर ही संभव। समय रहते बात कर ले, उनके संघर्ष और उनके अनुभव से सीख ले पाएंगे, दर्द जानने के साथ उनके गांव भरने का मौका भी। अगर आप चाहते हैं कि माता पिता की बातें, अनुभव, सोच आपके साथ हमेशा बनी रहे, तो समय रहते कुछ सवाल पूछना जरूरी है। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शोशना कहती है, ये सवाल न सिर्फ रिश्ते मजबूत करते हैं बल्कि जिंदगी को समझने में भी मदद करते हैं। पारिवारिक इतिहास सहजने में भी इनकी भूमिका अहम होती है। बहुत से लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि उन्होंने माता पिता से जरूरी सवाल नहीं पूछे। जब तक ये एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है, तो कैसे टटोले परिजनों का मन हल्के फुल्के सवालों से शुरुआत करें, तो वे खुलने लगेंगे। सीधे ना बता सके तो उनके जवाबों में संकेत तलाशें। इन दिनों आपको क्या पसंद है? माता पिता से गंभीर बातचीत की आदि नहीं है तो हल्के फुल्के सवालों से शुरुआत करें, जैसे फिलहाल आप किस चीज में रुचि ले रहे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है। इससे वे खुलते हैं। ये सवाल उन्हें रोजमर्रा की सोच से बाहर निकालता है और चर्चा आगे बढ़ाने में मदद करता है। माता पिता बने तो चिंता क्या थी? माता पिता बनने के अनुभव में कई परते होती है। संस्कृति, ऐतिहासिक पीढ़ियों का असर, ये सवाल उन्हें इंसान के रूप में देखने का मौका देता है। सामान्य इंसान की तरह उनके मन में भी चिंताएं थी, यानी वो परफेक्ट नहीं थे। हाल में किस बात पर राय बदली है? ऐसे सवाल ये दिखाते हैं कि सोच में लचीलापन जरूरी है। हो सकता है कि किसी पुराने मतभेद पर उनकी सोच बदल गई हो। ये पुराने गांव भरने और रिश्तों को नए नजरिया से देखने का मौका देते हैं। आपकी जिंदगी के दर्दनाक पल, ये सवाल संवेदनशील है पर सही समय पर पूछिए तो उनकी जिंदगी के अहम अनुभवों को जानने का जरिया बन सकता है। इसके साथ ये पूछना कि वो उस मुश्किल दौर से कैसे उभरे उनके संघर्ष और जज्बे को समझने में बहुत मदद करता है। किस तरह याद रखे जाने चाहते हैं, इससे ये पता चलता है कि अच्छे माता पिता, दोस्त या जीवन साथी किस रूप में याद किए जाना चाहते हैं। ये बातचीत रिश्तों की विरासत को मजबूत करती है। मौजूदा पल को किस तरह देखते हैं? अगर जिंदगी किताब है तो मौजूदा पाठ को क्या शीर्षक देंगे? इससे वे अपनी स्थिति रचनात्मक तरह से बता सकेंगे। समस्या सीधे नहीं बता सके तो जवाब से संकेत मिलते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। आपका आपसी जुड़ाव कैसा था, इससे बचपन व पारिवारिक समझ पाते हैं क्या वे भावनाएं साझा कर सकते थे, रोना मना था। पता चलता है कि पारिवारिक नियमों का असर उन पर क्या पड़ा, हमारे लिए क्या अहम लगता है, इससे उनकी गहन इच्छाएं सामने आती है। वे आपकी सफलता नहीं बल्कि रिश्ते, प्यार व देखभाल को भी महत्व देते हैं। रिश्तों को सुधारने के 3 सुझाव। बड़े होने का एक हिस्सा अपनी जरूरतों के लिए बोलना भी है। अपने लिए खड़े होने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि क्या आप क्या मांग रहे हैं। बातचीत से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा सोचिए। माता पिता मन पाठक नहीं है, अपनी भावनाओं, जरूरतों, चिंताओं को साझा करने के लिए तैयार रहे। बातचीत शुरू करने के लिए मैं कथन से शुरुआत करें। मैं परेशान हूं कि हम सिर्फ मेरे ग्रेड के बारे में बात करते हैं, इससे मैं तनावग्रस्त महसूस करता हूं। क्या हम उन दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं जो मैं कर रहा हूं? माफी मांगिए। अगर आपने गलती की है तो ईमानदारी से माफी मांगिए। अपने कामों और अपने द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी लें। समझाइए कि आप गलती की भरपाई के लिए क्या करेंगे। माफी को काम से जोड़िए। मैं समझता हूं कि आप क्यों चिंतित थे, मैं अगली बार फोन करूंगा। क्षमा करें। खुद को क्षमा करने से शुरुआत करें। अपराध बोध एक उत्पादक भावना नहीं है। इस बात पर ध्यान ना दे कि क्या गलत हुआ, इसके बजाय इस बात पर ध्यान दे आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, आपसी मतभेद मिटाइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आदाब, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे, मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

मेरी उंगली पकड़ता, मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा दुआओं में हाथ।

मुझे मेरा बचपन, मेरा अतीत, मेरी माजी के वो पल जिसमें मैं मिट्टी के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, हंसता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं, टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल हर पल मिटते रहे बेवजह।

भीगती बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल ये हवाएं तुम्हारे गेसों तुम्हारे रुखसार को छूने में है मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
0: गणपति बप्पा मोरिया।

प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल दिया गल्ला पंजाबी में, प्रस्तुत करता ललित शर्मा लाडी। ये कार्यक्रम रेडियो दस्ता आर्काइव्स से लिया गया है। रिकॉर्ड एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये है रेडियो दस्ता आर्काइव्स से FM 90.0।

0: तहजीब सिखा दी मुझे एक छोटे से मकान ने, दरवाजे पे लिखा था थोड़ा झुक कर चलिए। ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ बड़ी रिजा नाल लाके बापू ने है पालिया ओ दे करके।

एक बार फिर मैं सारे का स्वागत करता हाँ प्रोग्राम दिल दिया गल्लां दे विच। तो ये प्रोग्राम का अंतिम भाग है। असी गल कर रहे हाँ प्यार दी। प्यार का एक होर रूप है जुदाई। इस विच जा तां बंदा फिर कामयाब हुंदा है ते जा फिर नहीं। जिवें कि असी प्रोग्राम दे विच पहला ही गल कर चुके हाँ कि प्यार एक एहसास है ते रब नूं पाउण दा ये इक्को एक साधन है। श्री गुरु नानक देव जी भी कहिंदे ने कि बिन प्यार रब की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे तरह बुल्ले शाह जी रब नूं अपना महबूब बना उन्हां दी याद दे विच दिन रात नचदे सी। ठीक इसे तरह मीराबाई कृष्ण भगवान दे प्यार विच कमली होई फिरदी सी। अखीर विच असी इस सिट्टे ते पहुंचे हाँ कि प्यार रब दा दूजा नां है। इहदे नाल ही मैं प्रोग्राम दिल दियां गल्लां तों वदाई लैंदा हाँ ते फिर मिलांगे सारिआं दा। रब रखा, अपनी सेहत दा ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। स्टूडियो में आमंत्रित हैं कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला, उनसे बात करेंगे भारत सपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोरी लेके आया हूँ काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का एक नया अंक। हमारे प्रदेश और अंबाला के कवि कवित्री आज देश विदेश में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अपनी कविताओं के मधुर शब्दों से वो सब बता देते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा है। आज ऐसे ही मेहमान और एक कवित्री हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। उनसे आपको रूबरू करने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूं कि गत 30 जुलाई 2023 को उनकी पहली कविता संग्रह अनकहे एहसास का विमोचन हुआ अंबाला की एक सांस्कृतिक संस्था कला शिल्पी द्वारा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती है कदरदानों की। करते हैं स्वागत आज की शख्सियत कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
1: आप अपने जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जन्म कहाँ हुआ और शायरी की ओर कब से आप रागिब हुए?
2: जी, तो मेरा जन्म हुआ शाहबाद मारकंडा में, हरियाणा, विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्लेंटिफुल ग्रेन्स। बचपन से ही मैं अपने फादर से काफी इंस्पायर्ड रही हूँ। मैंने अपनी पहली कविता आई थिंक 10 साल की उम्र में लिखी होगी। तब से ये था कि दिमाग में जो भी इमोशन आए, एहसास आए, जो आप नहीं कह पाओ, वो लिखने के माध्यम से एक्सप्रेस करती थी। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 10 आई थिंक। मेरी एजुकेशन विश्वास स्कूल शाहबाद मारकंडा में 10th तक हुई। फिर मैं चंडीगढ़ चली गई, 11th 12th बीकॉम ऑनर्स एमकॉम सब मैंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मेरे करियर की शुरुआत एसडी कॉलेज अंबाला कैन से ही हुई। आई वर्क देयर एज अ लेक्चरर फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद शादी दिल्ली में हुई, वहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 साल काम किया। करंटली आई एम वर्किंग एंड स्टेइंग इन दुबई, वहाँ पे मैं DPS स्कूल में हाई स्कूल टीचर हूँ। और शायरी का शौक बहुत ज्यादा है, तो इट्स कंटिन्यूइंग विद मी एज आई एम ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग।
1: हमारे श्रोता इस समय ये जान रहे हैं कि जब हम जिंदगी का सफर शुरू करते हैं तो बहुत सारे मरहलों को हम क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे कहा कि आप ने पंजाब अंबाला, अब आप दुबई में रह रहे हैं, तो जो ये सफर है हमारी जिंदगी का, क्या एक अनुभव मिलता है हमें जब हम हर दिन कुछ नया देखते हैं?
2: आई एम श्योर, आई थिंक हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम है, ना कोई जगह है। बीट चंडीगढ़ या अंबाला या दिल्ली या फिर दुबई, हर स्टेज पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। इनफैक्ट कहने को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बट रोजमर्रा की जिंदगी में हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यस, इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल दीज इयर्स। मैंने पर्सनली बहुत सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत ग्रो किया, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे। हाँ जी, तो आप सही कह रहे हैं कि हम इट इज अ लर्निंग जर्नी।
1: और कवि या कवित्री के लिए ये जो सफर है, ये कितना अहम और जरूरी है?
2: पर्सनली ये जैसे आपने बताया काव्य संग्रह, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन, ये मेरी जर्नी की ही रिफ्लेक्शन है। ये पूरी जिंदगी में जो जो मैंने सीखा है, जो जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जो जो इमोशंस मैंने जिए हैं, तो ये मैंने कविता के रूप में ही एक्सप्रेस किए हैं। तो पर्सनली आई फील कि किसी भी पोएट या पोएटिस के लिए ये इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो इनको शब्द के रूप में एक्सप्रेस कर सकें।
1: बहुत सही कहा आपने। आपका जो नाम है रिदम है, रिदम का मतलब लाई होता है, जो संगीत के साथ जुड़ा है। क्या शायरी में भी लाई होना जरूरी है?
2: आई थिंक जिंदगी में हर चीज में लय होना जरूरी है, ताल होना जरूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे शायरी। शायरी में तो ताल या लय का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट ऑल्सो इज रिदमिक पोएट्री, बिकॉज मेरी हर उसमें आप देखेंगी कि ताल है। कहीं कोई भी चीज़ बेताली होगी तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे या उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक यस, हर चीज में लय ताल की बहुत जरूरत है।
1: हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये काव्य गोष्ठी कार्यक्रम है, तो अब हम कविता की ओर आते हैं। आपकी पहली कविता संग्रह से कौन सी कविता का पाठ हमारे श्रोताओं के लिए आप आज सबसे पहले करना चाहेंगे?
2: तो मेरी ये कविता जो मुझे बहुत पसंद है, ये औरत पे डेडिकेटेड है जी। तो मैं ये कविता सुनाना चाहूंगी। ये औरत है, कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है। ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़ कर रखे जो, ख्वाहिशों के बिखरे मोती संजो के रखे जो, अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में छुपाती है। ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। कभी पिता कभी पति कभी बच्चों की सुने, ये भी उड़ना चाहे पर ख्वाब उनके लिए बुने। गीली मिट्टी है ये, हर सांचे में ढल जाती है। ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। ऐसा नहीं कि ये कम है किसी तरह, है जोश है काबिलियत और है लबों पर दुआ। अकेले राह पर निकले काफिला बनाती है। ये औरत है यारों, कमाल कर जाती है। कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है। हाँ, ये औरत कमाल कर जाती है।
1: बहुत खूब, बहुत
2: शुक्रिया।
1: रिदम जी, जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे थे तो आप केवल पढ़ ही नहीं रहे थे बल्कि आप अपनी जो शक्ति है उसको भी बयां कर रहे थे। हमारा परिवार तभी पूरा होता है जिसमें माँ होती है, बहन होती है और बाकी सारे हमारी बेटी होती है। तो जब आप ये शब्द लिखते हैं तो क्या उस समय ख्याल होता है जब आप ये शब्दों का जाल बुन लेते हैं?
2: आई थिंक जो जब मैंने ये कविता लिखी थी, मैंने देखा कि वी वुमेन, हम यूजुअली खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम दूसरों के हिसाब से जीते जाते हैं। जब पहले हम सुनेंगे अपने पिता की, फिर बड़े हुए पति की सुनी, अब बच्चे सुनाते हैं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो। हमारे अंदर भी ख्वाब है, हम भी उड़ना चाहते हैं, बट उनको देखते हुए हम सोचते कि नहीं, पहले पिता के लिए कर लें, फिर पति के लिए कर लें, फिर बच्चों के लिए कर लें। तो वी एक्चुअली अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स और हम अपने लिए नहीं जीते। तो दिस पोएम आई रोट टू मे बी इंस्पायर अदर वुमेन सो दे शुड रियलाइज देयर पोटेंशियल। उनको पता चले उनमें कितनी काबिलियत है और वो खुद के लिए भी थोड़ा जीना शुरू करें। तो दिस इज माई वे ऑफ मोटिवेटिंग अदर वुमेन, या उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना।
1: ये एक बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। हमारे देश में इस समय आप जैसे लोगों की जरूरत है जो बाकी नारी शक्ति को या तो उनको जगाए या उनको प्रोत्साहित करें ताकि जो काबिलियत उनमें है वो काबिलियत को सामने ले आए और हम देश को मिलजुल कर आगे की ओर लेके जाएं।
2: जी, शुक्रिया। एक और मैंने पोएम, जैसे आपने माँ का जिक्र किया तो मैंने एक माँ पर पोएम लिखी थी। ऑफ कोर्स कोई भी घर माँ के बिना पूरा नहीं हो सकता। एज अ मदर आई रियलाइज कि हम ज्यादा अपने बच्चों के लिए जीते हैं और कम अपने आप के लिए जीते हैं। तो ये पोएम मैंने डेडिकेट की है हर माँ को। तो कहते हैं, रब का दूसरा नाम होती है, माँ जैसी बस माँ होती है। घर वो मुकम्मल है बस, माँ की इबादत जहां होती है। माँ जैसी बस माँ होती है। हर रिश्ते में है खुदगर्जी, लालच बिन बस माँ होती है। रब का दूसरा नाम होती है, हर कोई जब मुंह फेरे इसके लब पर हां होती है। माँ जैसी बस माँ होती है। माँ की गोद है मुझे बताती, क्या दोपहर में ठंडी छां होती है। माँ जैसी बस माँ होती है।
1: बहुत खूब, आपने माँ शब्द, इतना बड़ा शब्द है, इसके बारे में जितना भी हम वर्णन करें पूरी जिंदगी में
2: जी।
1: वो कम है। माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए हमें करना चाहिए, जितना भी हम करें उतना कम है, क्योंकि हमारा वजूद हमारे माता पिता हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: रिदम जी, क्या आप मानते हैं कि लेखिका बनना आपकी विरासत में है? क्योंकि आपके पिताजी सरदार कुलवंत सिंह रफीक जी एक जाने माने कवि है हमारे देश के।
2: जी बिल्कुल, मैं उनको देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ, और मैं आई थिंक मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। अच्छा इंसान बनना, अच्छा पोएट बनना, अपने कला को कैसे बेटर बनाना, व्हाट एवर आई हैव लर्नड आई ओ इट ऑल टू यू, ऑल टू हिम। जहाँ तक भी जो भी अचीव किया है, पोएट्री बुक हो या स्टेज कंडक्ट करना हो या एंकरिंग करनी हो, आई रिमेम्बर आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट ओरेटर इन द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट, एंड आई ओ इट ऑल टू हिम। उनको देख के कैसे वो बोलते हैं, एज अ इंसान हाउ ही इज एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक आई हैव लर्नड दिस ऑल फ्रॉम हिम ओनली। और ही इज अ डिक्लेयर्ड पोएट इंटरनेशनली ऑल्सो, वो मुशायरों में पार्टिसिपेट करते हैं, पोएट्री कहते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो अगर मैं उनका 1% भी बन पाऊँ तो आई थिंक आई फील कि आई हैव डन जस्टिस। तो यस, लेखिका बनना मेरी विरासत में ही है, इट्स अ गॉड गिफ्ट। ऑफ कोर्स ऑल माइटी की ब्लेसिंग्स के बिना, और उनकी ब्लेसिंग्स, माय फादर की ब्लेसिंग्स के बिना ये नहीं हो सकता था।
1: बहुत अच्छी बात है। सरदार कुलवंत सिंह रफीक लिखते हैं, रफीक जो है एक उर्दू लफ्ज है, रफीक का मतलब सबका रहबर, सबको रास्ता दिखाने वाला।
2: जी।
1: तो ये जो तखलुस है, तो इस तखलुस के बारे में क्या आप बता सकते हैं, उन्होंने अपना जो तखलुस है रफीक क्यों रखा?
2: आई थिंक ये जो तखलुस है उससे वो पूरा जस्टिस करते हैं। आई थिंक दिस इज वॉट ही इज, ही इज अ रहबर, ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ गाइड, हर किसी के साथ चलने वाले हैं, हर किसी की हेल्प करने वाले हैं, चाहे आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करनी पड़े। तो आई थिंक द वर्ड रफीक इज सिनोनिम टू हिज पर्सनैलिटी, तो उनको पूरा सूट करता है, पूरा जस्टिस करता है। और उन्होंने शायद ये सोच के रखा कि वो ऐसा बनना चाहेंगे, और हाँ उन्होंने ये अचीव किया है।
1: बहुत अच्छी बात है। और साथ में जब परिवार पूरा होता है एक बच्चे के लिए, माता और पिता, और ऑब्वियसली माँ जो आपके जीवन में एक स्थान रखती हैं, सबके जीवन में स्थान रखती हैं, माँ के बारे में भी आप अगर कुछ बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा।
2: जी, माँ के बिना तो हम खुद सब इनकम्प्लीट हैं। जी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार जो

0: हमारे लिए तो खुदा धरती पर माँ ही है।
1: बहुत खूब आपने माँ का वर्णन उस तरीके से किया, और मैं अपने शब्दों में जब माँ की बात करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ माँ अनमोल
0: जी।
1: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप संगीत भी सुनती हैं?
0: जी जी जी।
1: तो अगर आपको माँ को याद करना हो कभी, तो आप किन शब्दों में अपने पेरेंट्स को, खास करके माँ को याद करती हैं? क्या आप कुछ उनके लिए गुनगुनाते हैं या कैसे याद करती हैं?
0: जी, तो माँ के लिए मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो गुनगुनाती हूँ कि कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है तू, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय FM 90.0 पर कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, और बात हो रही है माँ की। आइए आपको सुनाते हैं रिदम जी का ये मन पसंद माँ के लिए ये गाना।

0: रिदम जी, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, और ये हमारे श्रोताओं के मन में भी ये प्रश्न होगा कि लेखक के मन मस्तिष्क में कब लिखने का ख्याल आता है? क्या कोई समय निर्धारित होता है लिखने के लिए?
1: आई थिंक कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब भी मन में कुछ कोई फीलिंग या कोई इमोशन बहुत बढ़ जाता है और हम उसको नहीं कह पाते किसी और से, तो पर्सनली आई फील कि तब हम उसको पोएम्स के माध्यम से जाहिर करते हैं। जैसे आई थिंक श्रोता भी मुझसे अग्री करेंगे कि हम जो लिखते हैं, हम लोगों के पास एक डायरी ज़रूर होती है। जब भी कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कुछ लव्स हमें आएँ, कुछ शब्द हमें लगे कि वी शुड बी राइटिंग दीज और एक्सप्रेसिंग दीज, तो हम उस डायरी में लिख देते हैं। तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है। कई बार तो मैंने बच्चों की इन्विजिलेशन करते हुए, कुछ देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने वहीं से टिश्यू पेपर लिया और वो पोएम मैंने वहीं पर लिख दी। तो ये ख्याल, ये इमोशन कभी भी हम पे हावी हो सकता है और इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यूजली वी राइट ऑन अ डायरी या फिर कोई भी पीस ऑफ पेपर जो भी अवेलेबल हो।
0: तो क्या हम इस बात को माने कि अगर एक ख्याल दिमाग में आता है और अगर हम उस समय उसको लिखे नहीं, नोट नहीं करेंगे, क्या वो हमारे मन में रहेगा कि नहीं रहेगा?
1: आई थिंक थोड़े समय तक ही मन में रह पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको लिख लें कहीं, ताकि जो भी शब्द जो भी हमारे मन में आए हैं, वो शब्द हम उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ जैसे हमारे दिमाग में हैं। तो लिख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा कि वो हमें उसी टाइम याद रहेगा। बाद में हो सकता है कोई शब्द आगे पीछे हो जाए, तो आई पर्सनली फील लिखना अच्छा है।
0: तो इस डायरी को आप कैसे श्रोताओं के सामने रखेंगे, जिस डायरी की आपने बात की?
1: जी, मेरे लाइफ में मेरी डायरी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। छोटे होते से ही, जब स्कूल में किसी सहेली से ही कोई छोटी सी झड़प हो जानी या कुछ, तो मैं वो भी आके अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो डायरी मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। तो मैंने एक पोएम अपनी डायरी को डेडिकेट की है। तो इट गोज़ कि जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ। ये कुछ नहीं कहती, ये सब सुनती है, संग मेरे नामुमकिन से ख्वाब बुनती है। कहीं किसी पन्ने में कोई चोट छुपाई है, तो कहीं अशकों से भीगी स्याही है। कहीं लिखी मैंने कोई अधूरी कहानी है, कहीं बचपन के पल, कहीं गुस्ताख जवानी है। दो पन्नों में एक सूखा गुलाब है, दिल के सौदों का जो करता हिसाब है। लिख कर कहीं कोई धुन मैं गुनगुनाती हूँ, जो अनकहे एहसास हैं इसको बताती हूँ। जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ। ये है मेरी डायरी।
0: बहुत खूब आपने इस डायरी के माध्यम से ये बताया, और इसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अनकहे एहसास। तो अनकहे एहसास के बारे में आप क्या हमें विस्तार से बता सकते हैं, ये अनकहे एहसास क्यों है?
1: जी, तो एज वी मूव ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते। तो मेरे जैसे लोग तो वो डायरी में लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जज्बात उनके मन में ही रह जाते हैं। तो मैंने जो मेरी पहली बुक है उसका शीर्षक है अनकहे एहसास, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरे इमोशंस हैं जो मैं किसी को कह नहीं पाई, तो वो मैंने अपने पोएम्स के माध्यम से जाहिर किए हैं। तो हेंस द टाइटल अनकहे एहसास। ऐसे बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं की होंगी, तो वो हम ऐसे कुछ फीलिंग्स हम इस बुक में भी पढ़ सकते हैं।
0: रिदम जी, मैंने आपकी जो ये अनकहे एहसास है इसको पढ़ा है
1: जी।
0: इस पे मेरी जिंदगी के साथ एक कविता जुड़ी है जिसका शीर्षक है अपना घर।
1: जी,
0: घर एक व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके जीवन में उसका क्या असर होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए ये कविता जरूर पढ़ें।
1: जी, ये कविता अपना घर मैंने ये सोच कर लिखी थी कि हम ता उम्र, स्पेशली हम औरतें, यू नो, ता उम्र अपना घर ढूंढ रहे होते हैं। पहले जब माँ बाप के घर में होते हैं तो होता है कि चलो इसने दूसरे के घर चले जाना है, जब शादी होती है उनके घर जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो यू नो माँ बाप के घर से आई है। तो हम ताउम्र यही ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा कौन सा घर है। लाइक व्हेन आई शिफ्टेड टू दुबई, ऑफकोर्स वो उनका घर है जिनसे हमने लीज पे लिया है, तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा घर कौन सा है। तो आई फेल्ट कि वी शुड बी मेकिंग अ घर इनसाइड अस, हमें अपना घर अपने अंदर ढूंढना चाहिए ताकि कुछ भी बदले, कोई आए कोई जाए, कोई तुम्हें वैल्यू करे या नहीं करे, तुम खुद को वो वैल्यू दे पाए।
0: हमारा अपना घर हमारे साथ चलता रहे।
1: जी जी जी, और चाहे निगाहें बदलें, वफाएं बदलें, आपका घर आपके अंदर हो तो आप कभी बेघर नहीं होगे। तो उस पे मैंने लिखा था अपना घर। तो ये दिस गोज की सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। जहां ना कोई बोले कि हम धन पर आए हैं, ना कोई सोचे कि दूजी जगह से आए हैं, जो हर हाल में अपना समझे वही नजर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। पड़े जो हम पर पत्थर इसकी नींव में भर देंगे, प्यार वफा के रंगों से दीवारें रंग देंगे, जो मंजिल तक पहुंचाए वो एक डगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। जो फिर किसी के दिल में आशियां बनाएंगे, जो बदली उनकी वफाएं तो बेघर हो जाएंगे, जो मांगी थी दुआएं उनमें असर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, बस अब अपने अंदर अपना घर ढूंढते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। आपने रिदम जी मेरे अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं इस कविता के माध्यम से। हमारी कोशिश है कि हम जब भी कोई शब्द लिखें, अगर वो किसी के लिए मरहम का काम करती है, इससे बेस्ट कोई भी चीज नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अपने जीवन में अपना घर खो चुका हूं
1: जी।
0: और पिछले 33 वर्षों से मैं अपने ही देश में विस्थापित हूं। तो मेरे लिए घर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी बात है, तो आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया कि वो जो घर हम पीछे छोड़ आए हैं वो घर आज के बाद मेरे मन में होगा, जहां मैं हूं वहां मेरा घर होगा। इसके लिए आपका, हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती रिदम डडियाला जी। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है, आइए बातचीत जारी रखते हैं रिदम जी से। रिदम जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि कविता या शायरी मरहम या सुखद एहसास का अनुभव पढ़ने वाले को या सुनने वाले को देती है?
1: जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ फील कर रहे होते हैं बट हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ तंग कर रही है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है और जब कभी मैं किसी और की शायरी सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा लगता है किसी को सुन के या समझ के ही सॉल्व हो गई हैं। तो बिल्कुल, आई थिंक पोएट्री कैन बी अ मीडियम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कंफर्ट देने के लिए, किसी को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत इश्यूज पे। तो यस, इट इज़ डेफिनेटली अ मीडियम। तो मैंने ये एक कविता लिखी थी कि आई फील कि हम लोग ना लेट गो नहीं करते। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा, प्रोफेशनल लाइफ में देखा कि हम पास्ट को पकड़ कर बैठे हैं, अपने पुराने जख्मों को पकड़ कर बैठे हैं जो हमें मेंटली खराब कर रहा है, हमें इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा हेल्थ खराब कर रहा है। तो इफ दिस पोएम ऑफ माइंड कुड हेल्प एनीवन टू लेट गो देन आई विल फील कि मेरा ऑब्जेक्टिव एक अचीव हुआ है
0: जी।
1: तो मैंने एक पोएम लिखी थी, रोको मत जाने दो
0: जी।
1: तो वो कहते हैं कि रोको मत जाने दो, बचपन में ये कहीं पढ़ा था, पढ़कर बस हवा किया था, इन लफ्जों में थी कितनी गहराई, ये बात आज समझ में आई। रोको मत जाने दो, जाने दो हर उस बात को, अधूरी सी मुलाकात को, हर एक झूठे जज्बात को, आंसुओं में भीगी रात को, रोको मत जाने दो। जो तुम्हारी आहट से उनका चेहरा न खिले, आंखें नम हों और दिल न पिघले, संग तुम्हारे चल उन्हें मंजिल न मिले, दर्द देने के तुम्हें चलते रहें सिलसिले, तो रोको मत जाने दो। हर ख्वाब हो पूरा जरूरी नहीं, हाँ थी एक कहानी अधूरी रही, शायद हर तरफ मजबूरी रही, सुकून से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं, तो बस रोको मत जाने दो।
0: हाँ बस जाने दो
1: जी।
0: बहुत खूब आपने ये कविता पढ़ी और रिदम जी से जानना चाहूंगा कि रिदम जी का जीवन में लक्ष्य क्या है?
1: आई थिंक एज अ टीचर आई रियली लव माई प्रोफेशन। तो इफ आई से प्रोफेशनली एज अ टीचर, मेरा लक्ष्य है टू हेल्प माई स्टूडेंट्स ग्रो, टू हेल्प देम लर्न एकेडेमिकली नहीं, पर्सनली, कि वो अच्छे इंसान भी बने कामयाब इंसान होने के साथ साथ। तो प्रोफेशनली येस, आई वॉन्ट टू टच देयर लाइव इन सच अ मैनर कि दे नो दैट दे हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, और जो वैल्यूज हम सिर्फ पढ़ाते हैं वो बच्चे उन वैल्यूज को इनकलकेट कर सकें बाहर, मेरे स्टूडेंट्स भी और घर पे मेरे अपने बच्चे भी। तो प्रोफेशनली यस, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर्सनली एज अ पोइटिस, मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं शब्द लिखती हूँ, आई जस्ट होप कि वो शब्द किसी को कम्फर्ट दे सकें, किसी को अंडरस्टैंडिंग दे सकें, किसी को इंस्पायर कर सकें, जो थका हो, हारा हो, उसको मोटिवेट कर सकें टू लिव लाइफ अगेन, एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग जॉय टू देम, आई वॉन्ट टू इंस्पायर देम। तो आई थिंक दिस इज माई वे, दिस वुड बी माई वे ऑफ गिविंग बैक टू माई रीडर्स। तो जी, यही मेरा लक्ष्य है।
0: इससे और बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या हो सकता है कि अगर हम जीवन में किसी के लिए एक रास्ता बना सकें या हम उनको प्रेरणा दे सकें, हम उनको प्रेरित कर सकें। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमने कोशिश की कि आज रिदम जी की जो लिखी कविताएं हैं, उनके जो शब्द हैं, वह हम आप तक पहुंचाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, रिदम जी के अच्छे दिनों की कामना करते हैं। वो ऐसे ही लिखते रहें और हमारे भारत देश का नाम जहां भी वो विश्व में जाएं, वहां उस नाम को और बड़ा करें, हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और अंतिम प्रश्न अभी रह गया है रिदम जी, आप एक कवित्री है, जो बच्चे या और लोग कविता लिखना पसंद करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्वरूप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: आई थिंक हमारा देश और आगे बढ़ सकता है कि जब हमारी नारी शक्ति भी अपना योगदान दे, हर तरह से जो भी उनमें टैलेंट्स हैं, दे शुड ब्रिंग देम फॉरवर्ड, वो अपने ख्वाबों को जिएं, अपने एहसासों को दबाएं नहीं, उनको खुल के बताएं वो क्या करना चाहती हैं, वो आगे आएं। आई थिंक वी हैव टैलेंट इन अबंडेंस इन इंडिया, बट वो कहीं छुपा बैठा है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी विमेन कि उनमें जो भी आर्ट है वो उस आर्ट को लेके सामने आए, और दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सो मेनी वेज, एंड सो दे शुड बी डूइंग दैट, दे कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर विमेन एज वेल। तो यस, आई वुड से, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अपना योगदान दें, प्लीज सामने आए और पंख फैलाकर उड़ें।
0: बहुत खूब, और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन, ये उम्मीद के साथ कि हर कोई नारी शक्ति अपनी काबिलियत के साथ आगे आए, अपना योगदान दे, जैसे वो देती रही हैं आज तक, अब कुछ नए अंदाज से दें। और हम आपसे विदा चाहते हैं, मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, आज के मेहमान थे कवित्री रिद्दम डडियाला, रिकॉर्डिस्ट व एडिटिंग दीपक कुमार, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सुपोरी।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव,

0: महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर। प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया। उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा। एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत। इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तरह तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: धर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दिया तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
2: योसा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदेशता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सब्जियों की खेती के लिए प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक से पौध तैयार करें, मजबूत होंगी जड़ें। रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को धूप में रखें और सिंचाई कम करें। सब्जियों की अगेती खेती और बम्पर पैदावार के लिए स्वस्थ पौध जरूरी है। जमीन की क्यारियों में पौध तैयार करने पर बीजों का अंकुरण कम होता है, जड़ें टूटती हैं और मृदा जनित फफूंद का खतरा बना रहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार इस समस्या का सटीक आधुनिक समाधान प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक है। बेहतर परिणामों के लिए पॉन्टिंग मिश्रण के सही अनुपात के साथ साथ कुछ मुख्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को शेड से बाहर खुली धूप में रखें और सिंचाई कम करें। 25 से 35 दिनों में जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं, तब शाम के समय खेत में रोपाई करें। 70% कोकोपीट 30% केचुआ खाद का उपयोग करें। प्रो ट्रे टमाटर बैंगन मिर्च और शिमला मिर्च के लिए 99 खांचों वाली प्लास्टिक ट्रे सर्वोत्तम रहती है। पुरानी ट्रे का दोबारा इस्तेमाल करते समय उसे फफूंदनाशी घोल या साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। पॉन्टिंग माध्यम 3 भाग अच्छी तरह धुली हुई कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और 1 भाग परलाइट का मिश्रण आदर्श माना जाता है। सामान्य विकल्प के रूप में 70% कोकोपीट और 30% बारीक छनी हुई केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। खांचे के बीच में गहरा खड्डा बनाकर बीज डालें। कोकोपीट की धुलाई कोकोपीट बिक्र को पानी में डालकर अच्छी तरह फुलाएं और 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। ट्रे भरना तैयार मिश्रण को प्रो ट्रे के सभी खांचों में एक समान भरें। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं ताकि हवा का संचार बना रहे। रोपण प्रत्येक खांचे के केंद्र में 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाकर एक एक प्रमाणित बीज डालें। बीजों को ऊपर से कोकोपीट की हल्की परत से ढक दें। हल्की सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे हल्की सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे या स्प्रे पंप से पानी दें ताकि बीज जगह से ना हिले। प्रबंधन व देखरेख ट्रे को 3 से 4 दिन के लिए काली पॉलीथीन से ढकें। अंकुरण चैम्बर प्रभाव बुवाई के बाद 4 से 5 ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर ऊपर से काली पॉलीथीन से 3 से 4 दिन के लिए ढक दें। इससे नमी और उचित तापमान मिलने से 95% से अधिक अंकुरण एक साथ होता है। धूप और सिंचाई अंकुर मिलने लगे तो ट्रे को अलग अलग करके नेट हाउस या पॉली हाउस में धूप में रखें। सुबह आवश्यकता अनुसार हल्का पानी दें। पोषण बुवाई के 12 से 15 दिन बाद 2 ग्राम 19:19:19 NPK प्रति लीटर पानी में घोलकर हल्का छिड़काव करें। मॉनसून में लौकी की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा किसान लगातार नजर रखें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियों व सड़े फलों को तोड़कर खेत से बाहर फेंकें। मॉनसून में लौकी की फसल पर फफूंद जनित एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा सामने आया है। ऐसे में रोग का प्रकोप बढ़ने पर किसानों की पैदावार और आय पर सीधा असर पड़ सकता है। करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र के संधीर गांव और आसपास के खेतों में रोग के लक्षण मिलने के बाद उद्यान विभाग ने किसानों को फसल प्रबंधन की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में करीब 20,474 हेक्टेयर क्षेत्र में लौकी की फसल होती है। पत्तियों पर भूरे धब्बे फल भी हो सकते हैं। प्रभावित एंथ्रेक्नोज की शुरुआती पत्तियों पर छोटे हल्के पीले अथवा पानी से भीगे हुए भूरे धब्बों से होती है। संक्रमण बढ़ने पर ये धब्बे गहरे कत्थई या काले रंग के हो जाते हैं। प्रभावित हिस्सा सूखकर छेद जैसा दिखाई दे सकता है और गंभीर स्थिति में पत्तियां झुलसने लगती हैं। रोग बढ़ने पर बेल की टहनियों और कच्चे फलों पर भी काले धब्बे बन सकते हैं। फल में सड़न शुरू होने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है और मंडी में कम भाव मिलने की आशंका रहती है। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर सप्लाई। हरियाणा में लौकी समेत कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दिल्ली NCR की नजदीकी मंडियों के कारण करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन है। 20,474 हेक्टेयर में लौकी फसल होती है। पिछले साल 2.86 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए थियोफिनेट मिथाइल 70% WUP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। खेत में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियां और सड़े हुए फलों को तोड़कर खेत से बाहर नष्ट करने की सलाह भी दी गई है ताकि संक्रमण दूसरे पौधों तक ना फैले। खेत में नमी नहीं बढ़ने दें। विभाग से संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र विशेष डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि बारिश के बाद खेतों में नमी और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी की बूंदे बनी रहने से फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। किसानों को नियमित रूप से पत्तियों और बेल फलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है। लक्षण दिखने पर विभागीय सिफारिश के अनुसार उपचार करने से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तोरियों की बुआई से पहले खेत तैयार करें। उन्नत बीज व खाद का रखें प्रबंध। उन्नत किस्म संगम TL15 और TH68 का करें उपयोग। तोरियों की बिजाई के लिए खेत को तैयार कर लें। तोरियों की उन्नत किस्म संगम TL15 या TH68 के बीज का प्रबंध कर लें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने किसानों को तोरियों की बिजाई की तैयारी करने की सलाह दी है। 1 एकड़ में संगम TL15 या TH68 किस्म का 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। सिंचित तोरियों में बिजाई के समय 26 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डालें। असिंचित फसल में 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय डालें। जिंक की कमी वाली जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। खड़ी फसल में कमी दिखने पर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। सुडान घास की कटाई करें। सुडान घास व संकर हाथी घास की हरे चारे के लिए कटाई करें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। प्रत्येक कटाई के बाद 22 किलोग्राम व 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से क्रमशः सुडान घास व संकर हाथी घास में दें। ज्वार व बाजरे की चारे वाली फसलों में बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 22 किलोग्राम अथवा मकचरी में 44 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाह। जो आज की उड़ान अंबाला तू लिखता रहे। अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे

0: प्राचीन मंदिर भी है जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सकें। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये

0: मनोहर। प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया। उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा। एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत। इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है, जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा, उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है खून की, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेते रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिन बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये

0: क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनवरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाइयां अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
1: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
0: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है जी। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times a week, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
1: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: थैंक यू सो मच।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नफरत

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं।

0: डीआरडीओ जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अम्बाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अम्बाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अम्बाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अम्बाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अम्बाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.4।

Seems like I despair. अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही तलच है, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 13। कार्यक्रम का शीर्षक है जिद। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी।
4: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, रेट्रो हिट्स का एक और अंक लेकर आई हूं। जिद, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है।
5: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

यूं है सब कुछ मेरे पास, बस दवाई दिल नहीं। दूर वो मुझसे है पर मैं उससे नाराज नहीं। मालूम है अब भी मोहब्बत करता है वो मुझसे, वो थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं।

जख्म क्या होता है ये बताएंगे किसी रोज, कमाल की गजल तुमको सुनाएंगे किसी रोज। थी उनकी जिद कि मैं जाऊं उनको मनाने, मुझे ये वहम था कि वो बुलाएंगे किसी रोज़।

बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहीं बारिश हुई। फलक को आदत थी जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमको भी जिद थी वहाँ आशियाना बनाने की।

थाम लिया खुद को अपने दम पर, मंजिल मिलेगी इस पक्के इरादे पर, हवा चाहे कितनी भी तेज हो, राह बनाएंगे इस फलक पर।

सागर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत।

हर एक गम को खुशी में बदल दिया हमने, जिद थी हमारी खुद को संभाल दिया हमने, हवाओं का रुख चाहे जिधर भी जाए, मुकद्दर को अपनी राह पर डाल दिया हमने।

तू अपनी जिद पे अड़ा है, मैं भी इरादे की पक्की हूँ। हर ठोकर ने सिखाया, मैं भी हौसले की पक्की हूँ। ये जो राहें बदलेगी, मैं फिर भी चलूंगा। हर मंजिल का दरवाजा मेरी जिद पर खुलेगा।

जिद पर हूँ अपनी मंजिल को पाने की, हर मुश्किल से टकराने की, ना हार मानूंगा ना रुकूंगा कभी, ये जिद है मुझे अपने ख्वाब सजाने की।

गिरते हैं संभलते हैं ये रीत पुरानी है, हर मुश्किल से लड़ना ही तो मेरी कहानी है। सपनों को सच करने की जिद लेकर चला हूँ, रुकना मेरा सफर में ये बात अनजानी है।

इसके साथ ही रेट्रो हिट्स का आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जो ठान लूं वो करके दिखाने की, दुनिया कहे नामुमकिन है जो उसे मुमकिन बनाने की। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 13। कार्यक्रम का शीर्षक था जिद। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

0: dala झमेल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं।

रात की मुसाफिर फिरती है डेरे डेरे बस्ती बस्ती, तलाशते हैं खोई हुई पहचान। ये रात भी मेहरबान होती जरूर गर कोई पुकारता। अपनी सोबत में रख कर ये जानने की कोशिश करता कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है।

बिखरती हैं तस्वीरें और भीड़ में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम रहते हैं बेताब, और यह बेताबी दिल में छुपती है। धीरे धीरे करवटों के सायों में जिंदगी गुजर जाती है यूं ही बेवजह, और ख्वाब आंखों की पुतलियों में बस जाते हैं यूं ही बेवजह।

यहां अक्सर परछाइयों से रिश्ते बने हैं और सायों से लिपटते रहे हैं। उदासी में सोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। जब जब मौसम बदलते रहे हैं, जब जब मौसम बदलते रहे हैं, तुमको अपने तस्वीर में उतारते रहे हैं। कुछ तुम कहते गए और कुछ हम सुनते गए।

सफर है मुरादों का और अपने सजदों में खुदा को ढूंढते रहे, पर ना खुदा ही मिला और ना ही हम सफर। आरज़ुओं में शिद्दत तो थी जरूर, पर इबादत बेअसर साबित हुई। अपने खत्मी सफर में कुछ ऐसी देर नहीं, जो देर है तो फकत थक के बैठ जाने की।

उतरा है। आईना लाओ, हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे आपसे रुख्सत।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रही थी FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रसारण आपको पसंद आए होंगे, और अपना फीडबैक भी आप जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम आपको कुछ क्षणों के बाद नोट कराएंगे। अपने पास पेन और पेपर या अपने मोबाइल पर आप नोट कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। हम हर दिन इजाजत लेने से पहले आपसे किसी खास विषय पर बात करते हैं, और आज भी करेंगे, और सुनाएंगे आपको आज की खास पंक्तियां जो आप सभी के लिए समर्पित रहती हैं। हमारे अब प्रसारण अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा, और इसने आपके दिन को और भी खुशनुमा और खूबसूरत बनाया होगा। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां हर कोई आजादी और अपनी मर्जी से जीने की बात करता है, वहां एक चीज जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है अनुशासन। लेकिन सच ये है कि बिना अनुशासन के ना तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ना ही कोई समाज या राष्ट्र प्रगति कर सकता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्त नियमों में बंधना नहीं है, बल्कि अपने समय, अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना है। जब एक व्यक्ति अनुशासित होता है तो वो अपने काम को समय पर पूरा करता है, दूसरों का सम्मान करता है और समाज के नियमों का पालन करता है। यही अनुशासन जब कई लोगों में एक साथ आता है तो पूरा समाज में सकारात्मक और सही बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, अपराध कम होते हैं, आपसी विश्वास बढ़ता है और लोग मिलजुल कर एक बेहतर वातावरण बनाते हैं। क्या अनुशासन केवल बड़ों के लिए जरूरी है या बच्चों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, इस विषय पर बात करते हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जवाब है अनुशासन बच्चों के लिए उतना ही, बल्कि कहा जाए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके जवाब में अगर बच्चों में शुरू से ही समय की पाबंदी, पढ़ाई के प्रति गंभीरता, बड़ों का सम्मान और नियमों का पालन जैसे आदतें डाली जाएं, तो यही आदतें आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। एक अनुशासित बचपन ही एक जिम्मेदार और सफल भविष्य की नींव रखता है। इसलिए माता पिता और शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में शुरुआत से ही अनुशासन के संस्कार डाल दें। इसका देश पर क्या सकारात्मक असर हो सकता है, ये उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि जब हम किसी समस्या की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका समाधान भी आप तक पहुंचाए। निर्णय आपने करना है, जो आपको सही लगे उस पर आपने विचार करना है और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जब देश के नागरिक, चाहे बड़े हो या बच्चे, अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो इसका सीधा असर पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। यातायात नियमों का पालन बढ़ता है, कार्यस्थलों पर उत्पादकता बढ़ती है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था कम होती है, और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। एक अनुशासित समाज ही एक विकसित, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की नींव रखता है। यही सच्चे राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। जी हाँ दोस्तों, यह था आज का विषय, और मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें सही दिशा में मैं आपके सामने रख पाया हूं। जाने से पहले वितस्ता की धारा जैसी बहती हुई एक छोटी सी शायरी आप सभी के नजर। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की धारा भी चलती है एक नियम से बंधकर, वितस्ता की धारा भी चलती है एक नियम से बंधकर, तभी तो सोचती है हर आंगन को अनुशासित होकर, तभी तो सींचती है
हर आंगन को अनुशासित होकर। एक बार फिर पढ़ लेता हूं। वितस्ता की धारा भी चलती है एक नियम से बंध कर, तभी तो सींचती है हर आंगन को अनुशासित होकर। जो जीवन में मर्यादा और अनुशासन को अपनाए, जो जीवन में मर्यादा और अनुशासन को अपनाए, वही इंसान समाज में सच्चा परिवर्तन ले आए, वही इंसान समाज में सच्चा परिवर्तन ले आए। जी हां श्रोताओ, यही कोशिश रेडियो वितस्ता की हमेशा रहती है। हर दिन हम आपसे किसी विषय पर चर्चा करते हैं समापन के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच और खास करके युवाओं और बच्चों को अपने देश के साथ, अपने जिंदगी के साथ सकारात्मक सोच के साथ जोड़ें। ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाने से पहले आपको कार्यक्रम का विवरण देता हूं। कल 20 सितंबर, माफ कीजिएगा, कल 14 सितंबर 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। कल हम आपके लिए ला रहे हैं गुड़गांव की आवाज का तैयार किया गया कार्यक्रम टीकाकरण पर एपिसोड 2। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय एपिसोड 37, शीर्षक होगा शंका, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 माँ अनमोल कार्यक्रम एपिसोड 2, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 10 बजे आप सुनेंगे परिचर्चा कार्यक्रम, हम बातचीत करेंगे अनिल कुमार यादव से, एक्टर डायरेक्टर से, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे होगा कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और ये कार्यक्रम होगा राजेश खन्ना पर आधारित, पेश करेंगे आर्यम सर। और 8:30 सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है एक लम्हा तुम्हारी याद का। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के हमारे कार्यक्रम भी पसंद आएंगे, और आशा यही है कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता की कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचा दी। तो दोस्तों, आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएंगे और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे, ताकि हम एक स्वस्थ, सफल और सशक्त समाज व राष्ट्र का निर्माण कर सकें। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के इस प्रसारण को यही विराम देते हुए मैं भारत सोपोरी आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।